जिसका सब आधार जी को खावा जी को पुंच तिसका हुए उधारु यह वस्तु तजी न जाई नित नित रख रतार ताम संसार चरण लग तरिया सब

नानक जन संकेत तरह पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम के मेहमान संत रित वसा संत प्रताप दुर सब नसा संत का संग बड़ पागी पाइया संत की सेवा नाम ते आइया नाम तोल कुछ हवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेके सर्व टडोल पूज नाही हर हरे नानक नाम अमोल। स्वरी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खर शस्त्र सिमरत विज्ञान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मजे फिरया अनक प्रकार की ये बहु जतना पूर्ण दान हो मैं बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु राती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी परे चिर जीवे महादास तपी सर थीवे अगर मैं हूँ मद पुराण कनक अशुभ है भरपूर दान न्यौली कर्म करे भव आसन जैन मार्ग संयम अद साधन निमख निम कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मैल न जावे हर के नाम संसार कुछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए। मन कामना तीर हृदय छुटे करो गुमान न मन थे उठे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन थे जात इस देही को बहुत साधना करे मन ते कभू न बिखिया टरे जल तो होवे पौधे अनीत शुद्ध कहाँ हो काची पीत मन हर के नाम की मैं माऊच नानक नाम उदरे पत पव मूच बहुत श्याण जम का पव व्याप अनक जल ग्रत सुन त्राप फेख अनेक अगन नहीं भूज कोट पादर गा नहीं सीज छूट सुना ही ऊ प्याल मोह व्यापे माया जाल अवर कर तू सगली जम डाना गोविंद भजन मिल तिल नहीं मानना हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सहज सुपाए चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरा सात सांगे होमे शोर है जे को जन्म मरण थे डर है सात जना की सरणी पर है जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सत्संग जा का मिटे अवमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हो सगल की रीना हर हर नाम दिन कर कर चीना मने अपने दे बुरा मिटाना पेखे सगल से साजना सुख दुख जन समेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को धन तेरो नाओ निसामे को नाओ तेरा दाओ निमाने को प्रभु तेरो मान सगल कटा को देवो दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी घर में जन हुआ पे अपन संग आप रब राते तुमरी उस्त तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म में शेष धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कट वसे हर नाम। श्लोक

रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल थे कवन स्थानी, जिंतु सास वार सिगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें अभारिया, बार बसा तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरध पया ऊपर साग सहन, मुख्य पाव बैठ को दैन, ए निर्गुण गुण कछु न भूजै, बख्श ले तो नानक सीज है, जय प्रसाद हर ऊपर सुख बसै, सुत प्राद मीत बंता संग हसै, जय प्रसाद पी वे शीतल चला, सुखदाई पन पाव के मुला, जय प्रसाद पोके सब रसा, सगल समग्री संग साध बसा, दीने हस पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दुख मुड़ अंध भे अपै, नानक हार ले प्रभ अपै, आद अंत जो रखनवार, तिस पीर न करे गवार, जाकी सेवा नवनिध पावै, तासे ओ मूड़ा मन नहीं लावै, जो ठाकर सर सदा हजूरे, ताको अंधा जान दूरे, जाकी ठहर पावै दरगह मान, तिसे बसारे मुग्ध अजान, सदा सदा इव फूल अनहार, नानक राखनहार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचे।

0: नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अमान सो नरक पाती हो वस सोवान जो जाने मैं जो बनवंत सो हो तो बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरे भोजन परमावै तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगे सुख पावै तनवंता हुए कर कर भावै तिन समान कर संग न जावै बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पर भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो नान सो जन नानक दरगाह परवान कोट करम करे हो तारे श्रम पावे सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार अनक जतन करे आत्म निद्रव हर दरगाह को कैसे गावे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रिंजा कामन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कज होए तब इसको सुख नाही कोए जब बे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जून में फिरता जब तारे कोई बैरी मीज तब लग नेचल नाही चीज जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छुटे सहस खटे लाखो उठतावै तृप्त न आवै माया पाछे पावै अनक भोग बिखिया के करै नहीं तृप्त आवै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरते सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसे प्राप्त होए करन करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जोश किन्नो सो अपने रंग सब ते दूर सबु के संग बूझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिनसै आवे न जाय नानक साध ही रिया समाय आप उपदेसै समझे आपे रचिया सबके साथ आप किन्नो अपन विस्तार सब किश उसका ओ करने हार उसते पिन कहो किश होए थान थन अंतर एक केस होए अपने चल तब करने हार कौतक करे रंग पार मन में अमन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने बखियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अति सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कर सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत के दुखन आर जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संत के दुखन कागजों लवै संत के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन तिगद जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलै संत के दुखन सब को छलै संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नचाए संत दुखी का थाओ को नाए नानक संत पावै ता ओ भी गत पाए संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीना, संत का निंदक दुख जायर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत के निंदा दोख में दोग, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोग, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मेत, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म में मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाव, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अज भी ते टूटे, संत का दुखी किसे काज न पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान परमाइया, संत का दुखी उजड़ पाइया, संत का दुखी अंतर दे थोथा, जो सास बिना मृत्यु की लोथा, संत के दुखी की जड़ किस ना है, अपन भी जापे ही खाए, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे ता लए उबार, संत का दुखी यूं बिललाए, जो जल भी हुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईंधन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआर तिल खेत में दुहेला, संत का दुखी धर्म थे रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, कीर्त निंदक का तुरी पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले से जाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइय, संत के दुखी की पूजे न आयासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तिष्ठ कोय, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कीर्त न मेटे कोय, नानक जाने सच्चा सोए, सब कट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्त करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास, सब किश वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खिलब करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बट पागी नानक जान से। श्लोक तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी मानो कीटक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान, तिसके दिए रहे अकाए, बौर नरसना लागे आए, मारे राखे एको आप, मानो के किछ नाही हाथ, तिसका हुकम भू सुख होए, तिसका नाम रखंठ पर होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्त मन में कर निंकार, करमन मेरे सत बिहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेक ठाकर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चरण चलो मारो को बिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सर्वण हर कथा, हर दरगाह नानक उज्जल मथा, बड़ भागी ते जन जग माय, सदा सदा हर के गुण गाय, राम नाम जो करे विचार, सेतन बंध गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, इत उत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने अब सुजे, तिसकी जानो तिस ना बुझे, साध संग हर हर जस कैत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, अंदन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जे जन की आशा, तिसकी कटिए जम की भाषा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दूग, जिसको हर परम मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं ढुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेव को किस ते डरे, जैसा साता सा दिष्ठाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बूझिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, नह कह जन्म नह किश मरे, आपन चल ताप ही करे, आपन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, अनक जगत रही थाप हो थाप, अविनाशी नाही किश खंड, तारन तारे हो ब्रह्मांड, अलख पे पुरख प्रताप, आप जपाए तो नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभा बंत, सगल संसार उदरे तन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किसी करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए होवे सोए करणे हार पिछाने सोए प्रभु की आजन मीठ लगाना जैसा सात है सा दिस जाना जिस ते उपजत समय समाए ओ सुख निदान उनु बन आए आपस को अब दिनो मान नानक प्रभु जन एको जान श्लोक सर्व कला परपूर प्रभु
1: गांडन हार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप बनसी प्रभ आपे आप अपन किया कछु ना हुए जे सो प्राणी लुच कोए तिस बिन नाही तेरा किश काम गत नानक जाप एक हर नाम रूपवंत हुए नाही मोहा प्रभ की जोत सगल कट सोहा तनवंता हुए क्या को गरबा जा सबके जिसका दिया दरबा अत सूरा जे को कहावा प्रभ की कला बिना कहतावा जे को हुए बहेदा तार तिस दिन हर जाने गावार जिस गुर पर सा टूट हो रोग नानक सो जान सदा अरोग जो मंदिर कहो थाम थमन त्यो गुर का शब्द मना अस्थमन जो पाखान आव चढ़ तर प्राणी गुर चरण लगित निस्तर जो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन हुए विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै तन संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख कहे बिल लाइया पुरब लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू तसा चतार जो कछ कर सोई सुख मान भूला काहे फिर अजान कौन बस्त आई तेरा संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत से ती कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताजब मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तू लाद के संता संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कह सब कोई मखुजल हर दरगह सोए एह वापार बिरला वापारा नानक ता कह सद बलहारा चरण साधके तोय तोय पियो अर्प साध कहो अपना जियो साधकी तूर खरो स्नान साध ऊपर जाइय कुरबान साध सेवा बड भागी पाइय साध संग हर कीर्तन गाइय अणक बिघन ते साधु राख हर गुण गाये अमृत रस चख उठ गही संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृता कौ जीवालन हार पूखे कौ देवत आधार सरबन दान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे सबकी तिसका हो करना जोग तिसबन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल एह करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जान निर्मल थिया जाके मन गुर की परती तिस जन आवा हर पवचीत भगत पनियस भगत सुनिया तिहलोए जाके हिरदा एको होए सच करनी सच ता की रहत सच हिरदा सतमुख कहत सची दृष्ट साचा आकार सच वर्त साचा पसार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग केश त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न तिस बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मै राख मानु की तू प्री त्याग तिस ते पर नाही किश को सरबन रंतरे को सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गे सुजाना पार परम परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शांद सत तरक्की चरनी पाओ नानक कह मन अहो अनुराग अन मनसा पूर्ण शरणा जोग जोकर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाना होर आनंद रूप मंगल सद जाका सर्व थोक सुनिया कर ताक राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गिस्त मैं भोगी तय तय भगतां सुख पाया नानक तिस पुरख का किना अंत ना पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता के जन्म के जाना पूत सगल परोई अपना सूत सुमत ज्ञान त्यान जिंदे जन दास नाम त्या बैसे त्योह गुण मैं जा कहो पर माए जन्म मरे फिर आवा जाए ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जन आवा तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे एक रंग नाना विद किनो विस्थार प्रभ बनासी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत पे पाई साब काढ़ तिसके सब तिसके ठाव जब जब जीव नानक हर नाव नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरी असु भवन नाम के संग उधरे सुन श्रवन कर कृपा जस अपना नाम लाए नानक चौथे पदम सोजन गत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माह समानी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मलीज सब जहे तिस सब भली सतनाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत तेजन जाकर हृदय प्रवेश सत नृत बुझ जय कोई नाम जपत ता की गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाना अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करना हार वरना बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस भाव सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझा तिसा सवाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाक संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन का संग एक लेव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हुसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत त्यावन हार आप सत सत सब तारी अपे गुण अपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभकता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन माने आ करन करावन तिन मूल पिछाने आ जा कर हृदय विश्वास प्रभ आया तात ज्ञान तिसमन प्रगटाया पहे ते निरपो हुए बसाना जिस ते उपजा तिस माहि समाना बस्त माहिले बस्त गढ़ाई तक उपिन न कहना जाई बूझे बूझन हार पवेक नारायण मेले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाना संग प्रभ का सेवक नाम का रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारा नानक सो सेवक सात सात सुमारा अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत में कोई न लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दाहन दस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम कर लश्कर कोट लख जिसका शासन काट तो आप ताको रख दे कर हाथ मानस जतन करतब भांत तिसके करतब विरथ जात मर न रख अवर ना कोई सर्व जिया का रख सोए काहे सोच कर हरे प्राणी जप नानक प्रभ अलख वडानी बारंबार बार प्रभ जपिया पिय अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके शबर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जोजन तृप्ताने मंतन नाम नाम समाने उठत बैठ सोवत नाम कह नानक जन कह सदकाम बोलो जस जे बदन दात प्रभ अपने जन की नी दात करह भगत आत्म कह जाए प्रभ अपने सिर राह समाए जो हुआ हुवत सो जाना है प्रभ अपने का हुक्म पछाना तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बस हजूरे कहो नानक से ही जान पूरे मन मेरे तिन की उठ लेहे मन तन अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पुछाता सो जन सर्व थोका दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावा तिसका दरसा पाप मिटावा अबर स्यानप सगली शाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सत पुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाव तिसका संग सिख उदरा नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक हो गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत माल हिर गुर बचनी हर नाम उचर सतगुर सिख के बंधन कट ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲ ਸਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰ, ਗੁਰ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਿਦਾ ਸਦ ਥਿਅਵ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਲੇ, ਬੀਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਨ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਨ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਰਿਦਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਆਣਕ ਵਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਸਰਬਣ ਧਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪੈਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛੁ ਪਰਮ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਜਨਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਗਵੇ, ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀ ਆਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖਾ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਸਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਹ ਭਾਏ ਕੁਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ, ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਗਮੈ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਈ, ਅਣਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰਹ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦਾ ਸਿਮਰਹ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਹਾਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸਚ ਉਪਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਆਂਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੈ, ਪਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬੱਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨੱਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਤਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਤਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਪ੍ਰਮ ਗਵਨਾ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ੍ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰ ਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬਨ ਰੰਤਰੇ ਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਕਾ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤਾਰੀ, ਆਣਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨਸਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਵਰੁ ਪਾਮ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦਮੈ ਉਰ ਤਾਰੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵੱਥ, ਇਹ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਹਿ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉੱਠ ਤਾਵੈ, ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤਵਾਂਸ਼ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ, ਅਣਕਿਉ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਏ, ਦਸ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ, ਤਾ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾ ਹਰ ਸੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ, ਪਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆਸ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸਾ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਘਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਅਣਕਿਉ ਪਾਵਨਾ ਛੂਟ ਨਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਵੰਛਤ ਨਾਨਕ ਪਲ ਪਾਏ, ਸੰਗਨ ਚਾਲਸ ਤੇਰਾ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾ ਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮਨਾਹਾ, ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬਿਰ ਬਣਤਾ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਪ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁੱਝੇ ਨਾਮ ਬਿਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹੇ ਆਪ ਜਪੋ ਅਬਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਸੁਣਤ ਰਹਿ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ ਸਾਰ ਪੂਜ ਸਤਰਕੋ ਨਾਉ ਸਿਰ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੇ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨ ਸਜਾ ਹਉਮੈ ਬਖ ਫੈਲ ਹੋਏ ਚਿੰਤ ਬਸਾ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੁਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਤਸੰਗ ਪਾਵਾ ਸਚ ਧਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚਕਰ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗਾਹ ਜਾਕਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਾਕਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਾਪ ਏਕੋ ਸਾ ਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ ਏਕ ਸਿਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਮਨ ਥਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰਾਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਕ ਵਿਸਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ਏਕ ਰਾਧ ਪਰਾਸ਼ਤ ਗਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਭ ਰਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਭਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਤੂਰ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈ ਤਿਹਾਵੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ ਜਿਨ ਚਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਾਨੇ ਸੋ ਪਰ ਪਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਅਣ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਣਦਿਨ ਲਿਬਲਾਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਯਾਲ ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਪ੍ਰਮ ਗਇਆ ਏਸ਼ ਪੁੰਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਦਸੰਗ ਹਜੂਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਨਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਨਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖਤੇ ਕੱਢ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ ਗੁਰਪੂਰਾ ਤਾਤੇ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ ਆਣ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਭਗਤ ਭਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੁਸੀ ਸ਼ਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਦਨਾਮ ਬੁੱਢ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੁਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਹੀ ਸੁਆਉ ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਬਿਗਸਾ ਸਦ ਚਰਨ ਧੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕਉ ਪਾਵੈ ਸੰਗ ਏਕ ਵਸਤ ਦੀਜੇ ਕਰਮਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਹੇ ਆਸਰ ਬਿਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਆਰ ਨੀਚੇ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬੈ ਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮਖਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਣਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸੁਭਤਨਵੰਤ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ਸਲੋਕ

सेवक को सेवा बने आई, हुकम बुझ परम पद पाई, इस ते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोर पए निर्वैर, अंधन पूजे गुर के पैर, ए लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार, अमृत भजन हर के गुण गाओ,

प्रभु कृपा ते प्राणी छुटा, जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटे हंकार, ते जन कोयो कोय न पहुंचन हार, श्री ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दिष्ट, दर्शन पेखत उदरत शिष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर्यामी पुरख प्रधान, जिस मन बसे सो होत निहाल, ताके निकट नया बदकाल, अमर पै अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेठिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समगरी एक कट माय, अनक रंग नाना दिष्टाय, नौनद अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम, सुन समाद अनहत नाद, कह न जाय अचरज विस्माद, तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक ते जन सो जी पाय, सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट प्याप रह भगवंत, तरन मह आकाश प्याल, सर्वलोक पूरन प्रतपाल, मंतिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दह दिशे समाह, तिस्ते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, बेर प्राण सिमृत में देख, शशर सूर नखत्र में एक, वाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले, सर्व कला कर खेल खेल, मोल न पाइया गुण अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में ए विश्वास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने सब बचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख मानै, करन करावन हार प्रभ जानै, अंतर बसै बार पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एक अंकार, अनक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतरगस जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्वभूत आप वरतारा, सर्वनयन आप पेखनहारा, सगल समगरी जाका तना, आपन जस

सबके मद अलिप्त हो रहे, जो कुछ कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इसते हुए सो नाही बुरा, उरे कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अत नीकी, आपे जाने अपने जी की। आप साज तारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच। ताकि गतमित कही न जाए, दूसर होए तो सोजी पाए। तिसका किया सा परवान, गुर प्रसाद नानक ये जान। जो जाने ते सदा सुख होए, आ मिलाए लय प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत थराया। जन आवन का हे स्वभाव, जन के संग जित आवे नाव। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन

धिष्ठेता ए बल तिस जन के मुख बने गुरु नानक नाम भजन मन सुने यो निदान जपे मन कोय सब युग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट प्रात साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए।

तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। वाहिगुरु जी, मार्ग मोती बिथरे,

अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मालिक होई, गुण निदान भगतन कौ बरतन बिरला पावै कोई। अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मालिक होई, गुण निदान भगतन कौ बरतन बिरला पावै कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाईऐ

मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग जिस वखर को चाहता सु पायो न मैं रंग जीते माया रंग रस बिनस जाहे खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए सब जग चल तो पेखिए निहचल हर को नाओ कर मित्राई साध स्यों निहचल पावे ठाऊं

प्रभनाथ। चरण कमल बोहित पए लग सागर तरय ते भेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यों ने।

मिलाए, सुख शिंगार बिखिया के फीके, तज छोड़े मेरी माए, काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे, सतगुरु चरनी पाए।

जिस तू मिले सो मिले प्यारी तिसके लागू पाए जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुखते कहन न जाए।

नदर करे। नाने रवत रह कटियंतर हर गुण गावे सोई, आपे आ मिलाए करता पुनरप जन्म न होई। ततै तारू पवजल हुआ ता कांत न पाया, ना तर ना तुलहा हम बुडस तार लेह तारण राया। तथै थान थनंतर सोई, जां का किया सब हुआ, क्या परम क्या माया कही है ज्योतिष पावे सोई पला। ददै दोष ना देऊं किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। तदै धार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जिन रंग किया, तिसदा दिया सब ना लिया, करमी करमी हुकुम पया। नन्ने ना भोग नित भोगै, ना डीठा ना संभलिया, गली हो सुहागण भैणे, कंत न कबहू मैं मिलिया। पप्पै पातशाह परमेश्वर, वेखण को प्रपंच किया, देखै बूझै सब कुछ जाणै, अंतर बाहर रव रहिया। फफै फाही सब जग फासा, जम कै संगल बंद लिया, गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत भज पया। बब्बै बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा ढालन आप लगा। बब्बै पालै से फल पावै, गुर प्रसादी जिन को पया पया, मनमुख फिरै न चेतै मूड़े, लख 84 फिर पया।

City of रहाओ सिनंगाए सिमरै नाही नन्ने ना तुद नाम लिया शशे शीजे एन समूड़े क्यों छूटे जम पाकड़िया बब्बे बुझे नाही मुड़े परम पले तेरा जन्म गया अणहुंदा नाऊ तरायो पांदा अवरा का पार तुद लिया जज्जै जोत हिर ली तेरी मुड़े अंत गया पछतावेगा एक शब्द तू चीने नाही फिर जूनी आवेगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नू ना सिखाल बिखिया।

जीवन दाता, हर मन राता, सहज मिले मिलाया। साध सभा संता की संगत, नदर प्रभु सुख पाया। हर की भगत रते बैरागी, चूकै मोह प्यासा। नानक हो मैं मार, पतीने विरले दास उदासा। राग आसा महला पहला, शंत घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तू सबनी थाई, जिथे हो जाई। साचा सिरजनहार जियो, सबना का दाता, कर्म विधाता। दुख विसारण हार जियो, दुख विसारण हार स्वामी। कीता जा काहू वै, कोट कटंतर पापा कीरे। एक घड़ी मैं खूबै, हंस से हंस, बग से बग्गा, कट कट करे विचार जियो। तू सबनी थाई, जिथे हो जाई। साचा सिरजनहार जियो, जिन एक मन त्याया, तिन सुख पाया। ते विरले संसार जियो, तिन जम

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद नगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वीडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद बीजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद

निरुपम निरंकार सृष्टि नाम जाका किया सगल जहान। सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाओ, सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंगाए पार। कोलू चरखा चके जाक थाल बरोले बहुत आनंद, लाटू मदानियन गा पंखी पौंद्या लैन सहा।

ला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ रप कूड़ कप

तुम करता करना मैं नहीं जाहो करी ना हो बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंतरा जाई लख्या रहा।

बिन चाखे साध न जापे, कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख होवे ताए को जाने, हो मैं दुख ना संतापे। बलिहारी गुरे अपने विटों, जिन साचे स्यों लिवलाई। शब्द चीने आत्म परगाशिया, सहजे रहा समाई रहाओ। गुरमुख गावे गुरमुख बुझे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कार्ज सवारे। मनमुख

प्यारी, सोई सेवक जे सतगुर सेवे चालै सतगुर पाए। साचा शब्द सिवत है साची, साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखै होमै विचों जाए। आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए। सदा लिवत साचै रंग राता, गुर कै सहज सुभाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोलै, बिख भी जय बिख खाए। जमकाल बादा त्रिश्ना दादा, बिन गुर कवन छड़ाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। अड़सठ तीर्थ गुर शब्द दिखाए, तित नहातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिवत सच्ची साला, पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा, दुरमत कहन न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमै विचों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, त्रिश्ना अग्न बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता, सहजे रहया समाए। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै पाए प्यारे।

0: संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग
1: प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन कबू न चूरे
0: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सह समानी
1: प्रभु के सिमरन चलासन प्रभु के सिमरन कमल बिगासन
0: प्रभु के सिमरन अनजुन कार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: से जन जन को प्रमया नानक केंजन सरनी पया
0: हर सिमरन कर प्रगत भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए
1: हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन ली चौं कुंड जाते
0: हर सिमरन तारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन के सगल आकार हर सिमरन में आ

0: हर का नाम जान को रूप रंग हर नाम जपत कब परे ना भंग
1: हर का नाम जान की बड़ियाई हर के नाम।

0: अगन मायो मत प्राण कन का सब हेवर भूम दान
1: कर्म करे बोवासन जैन मार संयमियत साधन
0: नेमक नेमक शरीर कटावे तो पियो में मैल न जावे
1: हर के नाम संसार कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जप

0: मन हर के नाम के प्री मैं माऊच नानक नवदे पतित बमूचा
1: अनेक
0: अनेक अगने।

0: जय प्रसाद सती अमृत खाए तिष्ठा कर को रख मन माए।
1: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे।
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे तिहाई सदा मन अंदर।
1: जय प्रसाद सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना।
0: जय प्रसाद रंग रस भोग ना सदा तिहाई ते हमन।

0: बात रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे।
1: जय प्रसाद सुने करनाथ, जय प्रसाद विस्माद।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना।
1: जय प्रसाद हस्त कर जले, जय प्रसाद संपूर्ण फले।
0: जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सहज समा।

0: साखी महिमा बने कौन प्राणी, नान साध की शोभा प्रमाइस मानी।
1: साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा पर फुले।
0: साध सा आवे बस पंचा, साध सा अमृत रस पुंचा।
1: साध संग होए सब की रेन, साध के संग मनोर बैन।
0: साख संग ना कतु तावे, साध सा अस्तित्व मन पावे।
1: साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न।
0: साध संग दुश्मन सा

0: सा संजाने परमानंदा
1: साध के संग नहीं ताप साध के संग तजे सब आप
0: आपे जाने साध वडाई नानक साध प्रभु।

0: ज्ञान सदा सज्जागत ब्रह्म ज्ञानी है बोध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वीरता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता।

0: ब्रह्म ज्ञानी का दस वट भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन मा है,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाकर, ब्रह्म

0: अस प्रेत मुद पात्र को तारे
1: सब रोकाओ खद नाम कल्याण मंगल गुण गाम
0: काहू जोत कि ना पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखे।

0: कोट पिसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कब का विचार है
0: कई कोट नाम तिहावे नानक करते का अंत

0: कबू सोग हाक संग हसे,
1: कबू नींद नींद व्यवहार, कबू उपवास प्याल,
0: कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मला बनहार,
1: कबू नेत करे बोपात, कबू सोए रहे दिन रात,
0: कबू महाक्रोध विकराल, कबू सब की हो तरवाल,
1: कबू होए बहे बन राजा, कबू भिखारी नीच का साजा,
0: कबू आप कीर्त में आवे, कबू पला पला कहावे,
1: जो प्रभु राखे तिवी रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे,
0: कबू होए पंडित करे बखियान, कबू मोन तारी लावे ध्यान,
1: कबू ताते लिस स्नान, कबू से साधक मुख ज्ञान,
0: कबू कीट हस्त तंग होए जिया, अनक जुन पर में पर मिया,
1: नाना रूजो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवे नचावे,
0: ज्योति सपावे सोई होए, नानक दूजा वरना कोए,
1: कबू सास संग देह पावे, उस संसार ते बोर ना आवे,
0: अंतर होए ज्ञान प्रगा

0: परमंत कहावे, जन्म मरे बो जुन परमावे।
1: कान पूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान।
0: कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक की हम मुख दागे सुख पावे।
1: धनवंता हो

0: धर्म रायत करे खुआरी
1: गुर पर साजा का मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए परवान
0: कोट कर्म करे हूँ थारे शर्म पावे सगले

0: जा के मन होए, को नानक ताकी निर्मल सोए।
1: जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए।
0: जब मैं जाने जब ए

0: लंग धर्म राय देश जाए।
1: रब कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे।
0: सहज कटे लक उठ तदावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे।
1: अनेक भोग विद्या के करे, न तृप्त आवे खप खप मरे।
0: संतोख नहीं को राज जाए, सुपन मरोत व्यर्थ सब काज जाए।
1: नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए।
0: कर्ण करावन अप

0: संत का दुखी
1: सब त्यागे,
2: संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी,
0: संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुख ते तरे,
2: संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पाए तले मलाई,
0: संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुंचे,
2: संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा,
2: संत के दुखी की जड़ किछ नाही, अपन भी आपे ही खाए,
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे तले वार,
2: संत का दुखी क्यों मिलाए, जो जल भी

0: जाने सच्चा सोए।
1: साकार तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार।
0: सद करो दिन रात, तिसे ते आवो सास ग्रास।
1: सब कुछ वर्त

0: जिसके दिए रहे अगाए बहुत नतिशना लगे आए इसका हुकम पुस्तक होए इसका नावरा कंट परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक विघ्न न लागे कोए।

0: सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद सब बुझिया।
1: देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्तूल।
0: न कुछ जन्मे न कुछ मरे आपन चलते आप ही करे।
1: जामन जामन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ।
0: आपे आप सगल में आप अनिक आप
1: नाही किस खंड तारण तार रे हो ब्रह्मांड।
0: लाख भेव परख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप।
1: प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदरे तन मंत।
0: प्रभ के सेवक सब उदान प्रभ के सेवक दुख विसान।
1: आपे मिल ले कृपाल गुर का शब्द जपे निहाल
0: उनकी।

0: हार तिस देन हार जाने गवार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे और रोग ना सो जसदार रोग
0: जो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मन अस्थमन

0: साधु समिल जोत प्रगटावे।
1: तन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर।
0: मन मूर्ख काहे बिलाइए पूर्व लिखे का लिखिया पाइए।
1: दुख सुख प्रभु देवन हार अवर त्याग तू तिसे चेतार।
0: जो कोई करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे जान।
1: कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहो रसलो।

0: में कर लेना पाए।
1: सब किस तिसका ओ करने जोग, तिस बन दूसर हुआ न होग।
0: जप जा सदा सदा दिन रहनी, सब ते निर्मले करनी।
1: कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया।
0: जाके मन गुर की प्रतीत, ते जने आवे हर सब चीत।
1: भक्त भक्त सुनिए।

0: नानक मन एहन रहो।
1: मनसा पुरुष ना जोगा जो कर पाया सोई होगा।
0: अर्ण पर्ण जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर।
1: नंद रूप मंगल सज जाके सर्व तो सुनिए करता के।
0: राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सर गृहस्थ में पोगी।
1: तहे तहे भक्त सुपाया नाथ इस पुरखा के अंत न पाया।
0: जाकी लीला की मित नाहे सग।

0: नाना जलत करे किन माहे पूर रे पूरन सब ठाए
1: नाना बेदकर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई
0: साव का तिसके साथ इसके ठाओ जप जप जीवे नान करनाओ
1: नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमर बे प्राण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार
0: नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के समुद्रे संस्करण
1: हर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब महे समाणी
0: सत कर्म जाके जना सत मूल सत सत पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सा फली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत निर्द बूझे जे कोई नाम जपता की गत होए
1: आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मत गत
0: जिसकी सिस्तो करने हार अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मत न जाने किया नानक ज्योत पावे सो भर दिया
0: बिस्मन बिस्मन पे बिस्मार जन बुझा ते से आया स्वाद
1: रब के रंग राज जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे
0: ओए दाते दो काटन हार जाके संग तरे संसार
1: जान का सेवक सो बड़ भागी

आप सत सत सब धारी आपे गुण आपे गुणकारी नार को सस होए नानक सत सत प्रभ सोए।

0: मंत्र प्रिय
1: नाम रंजन गुर मुख पाया तिसको सवर नहीं दिसताया
0: नाम का नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जा तृप्ता ने

0: बीज बीस में गुर का मन माने, सो सेव परमेश्वर की गत जाने।
1: अनेक बार गुर को बल जाओ,
0: सर्वदा जी का दाता, आठ पैर पाप रंग रगाता।
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म, एक अपना एक परम।
0: ऐसे अनपल्या न जाइए, नानक ऐसा गुरवड़ भागी पाइए।

0: भंडारनाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: ओबिन से पूर्ण आस भक्त पाया तम परगास
0: तित कर जाए बसे अविनाशी कौ नानक काटी जम फांसी
1: सत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा
0: आवागमन मिटे प्रभ सेव आप

0: जन्म जन्म के खिल बिक जाए।
1: आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत गैत रहत गत पावो।
0: सार पूछत हर को नाओ, सह सुभाए नाने गुण गाओ।
1: गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिंस जाए हमें बिख फैल।
0: होए चिंत बसे सुख नाल, सास सास हर नाम सुमाल।
1: चाड सियानब सगली मना, सास संग पावे सच तना।
0: हर पूंजी सच करो विहार, इया सुदगे जयकार।
1: सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख।
0: एको जापे को सलाहे, एक सिमर एको मन।

0: प्रसाद भरम का नास, नानक तन्मय इहो विश्वास।
1: संजना का भेख सब ब्रह्म, संजना के देह सब धर्म।
0: संत जना सुने सब बचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन।
1: जिन जाता तिस की ये रहत, सत बचन साधु सब कहत।
0: जो जो होए सोई सुख मन, कर्ण करावन हार प्रभ जान।
1: अंतर बसे बार पी होई, नानक दर्शन दे समोई।
0: आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत।

0: अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जाने आप बुझाए सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना
1: आवन जाने के खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया
0: सब कह मद अलप तो रहे जो किस कहना सुआपे कहे
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जा पावे
1: ताले समाए
0: इस ते होए सुना ही बुरा उरे कहो किने कश करा
1: आप लागर तू तनी की आपे जाने अपने जी की
0: आप साच तारी सब साच ओत पोत अपन संग्राच
1: ताकि गदमन कहीं न जाए दूसर होए ता सुजी पाए
0: किसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक

सफलो जन्म समाय। दूजड़े कामण परम भुली हर वर न पाए राम। कामण गुण नाही बिरता जन्म गवाए राम। बिरता जन्म गवाए मनमुख याणी अवगुण बंती चूरे। अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर बिगसी अंदरों सरसी सच्चा शब्द सुभाई। नानक बिन नावे कामण परम बुलाणी मिल प्रीतम सुख पाई। फिर संग कामण जानिया गुर मेल मिलाई राम। अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया। मिल प्रीत अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुभाखिया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके भेखी मुक्त न पाई। नानक बिन भगती जग बोराना सच्चे शब्द मिलाई। सा धन मन आनंद पया हर जियो मेल प्यारे राम। सा धन हर कै रस रसी गुर कै शब्द पारे राम। शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन वसे। से सुवी जा बिर रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे। जित कर नाम हर सदा त्याई सोहे लड़ा जुग चारी। नानक नाम रते सदा आनंद है हर मिलिया कारज सारी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर तीजा। साजन मेरे प्रीतमो तुम सह की भगत करे हो। गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो।

0: दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नाही जाऊं करी ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाउ। जात मैं जोत जोत मैं जाता हकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब शिव सवाले हो जिन की तीसो पार पिया। कहो नानक करते किया बातां जो कुछ करना सो कर रहा।
1: सोदर रागा सा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।